0: कैश पिता ले लीजिए,
1: एंसल पैक किन लीजिए, जहिया फेन जहाँ फेन पैक खरीद करी तो 20% कम कैश फिर तक एंसल ऐप में क्लेम करी।
0: कैश पिता ले लीजिए, कैश पिता ले लीजिए,
1: एंसल पैक किन लीजिए, सर लागू हुई एंसल नेपाल के लग।

पेंसिल पैक किन लीजिए जहिया पेन जहां पेन पैक खरीद करी ओपीस प्रतिशत कम कैश फिर तक एंसिल ऐप में क्लेम करी एंसिल पैक किन लीजिए सर लागू हुई एंसिल नेपाल के लग।

0: सेवा का साथ ही प्रत्येक शनिवार र हप्ता का अन्य दिन अनुभवी तथा विशेषज्ञ डाक्टर द्वारा
1: ओपीडी प्रसूति तथा स्त्री रोग हाड़ जोड़नी नाक कान घाटी बाल रोग छाला र जनरल सर्जन सम्बन्धी भरपर्दो उपचार उपलब्ध छ।
0: एकै छत मुनि अत्याधुनिक कलर डप्लर अल्ट्रासाउन्ड डिजिटल एक्सरे ईसीजी र 24 घण्टा फार्मेसी सेवा।
1: ढिला नगरी आजै सम्पर्क गरौं, यो विशेष अवसरको फाइदा उठाउँ।
0: लाइफ भिजन पोलिक्लिनिक कपिलवस्तु नगरपालिका 6 थुमुवा सशस्त्र चोक। थप जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 98174888 र 97386702060।
1: लाइफ भिजन पोलिक्लिनिक, तपाईँको स्वास्थ्य हाम्रो प्रतिबद्धता।

0: पेंसिल पैक किन लीजिए जहिया पेन जहां पेन पैक खरीद करी तो 20% कम कैश फिर तक एंसिल ऐप में क्लेम करी
1: कैश फिर तक ले लीजिए
0: एंसिल पैक किन लीजिए सर लागू हुई एंसिल नेपाल के लग।

0: रेडियो बुद्ध आवाज 89.6 MHz मा सुन्न नभुल्नु होला।
1: यति बेला साँझको 7 बज्यो।

0: अब जाए के घर के देवाल लिपोती के ओराए लाग।
1: मुस्कान बिटिया, ए मुस्कान बिटिया, घर के देवाल लिपोत के नाई खत्म बाबा, खेत में काम करे वाले का नहारी लेके जाए के रहा।
0: ओराए लाग अम्मा।
1: ए अच्छा, हम नहारी बना के धई दे थे, अब भी लेके चली जाओ।
0: हो थे अम्मा। ओहो, यही देवालिया में बिल है, माटी से बंद कर दे पड़ा की काओ। हाँ, अब बंद कर दी थे।
2: अरे बापा रे अम्मा, हमें सांप दसलीस।
1: अरे बाप रे बाप, कहाँ दसलीस बिटिया?
2: यही दही हाथ में दसलीस अम्मा।
1: अरे अरे क्यों क्यों, अरे है क्यों, हमरे मुस्कान बिटिया का सांप दसलीस, अरे क्यों है क्यों है?
3: अरे कहाँ हुई गवा, कहाँ हुई गवा काकी?
1: राकेश बाबू देखो ना, मुस्कान का सांप दसलीस की काओ।
3: ना घबराओ जय काकी, मुस्कान ना घबराओ, शांत हुई के बैठी रहो काकी, बल्कि मुस्कान का सीधा सुता बजाए और ना हिला बजाए।
1: वो थे बाबू, मुस्कान मुस्कान बेटा सीधा हुई की सुतो।
0: होता है
3: काकी, आप मुस्कान के पहिरा कपड़ा और गर गहना ढीला कह दिया जाए, न कस जाए के मेर से, और हाथ के चूड़िया खोल दिया जाए, दस लिया ओकरा हाथ न चलाव जाए।
1: हो थे बाबू, और सांप दस लिया जगह के आसपास काट के इंजेक्शन से तान के या मुंह से चूस के विष निकाले के होए की?
3: नहीं काकी नहीं, सांप दस लिया घाव के आसपास काटे जारे चूसे के काम नहीं करे चाहिए, और कुछ नहीं खियावे चाहिए, पनियों नहीं, बुझा गए ना?
1: तब तो जहर मोरा लाई के सपुआ डसी लिए जगह पर लगाई गई तो बाबू।
3: वो नहीं काकी, घरेलू उपचार जैसे कि जहर मोरा, जंगली घास पात और जड़ी बूटी के प्रयोग नहीं करे चाहिए, बुझा गए ना?
1: बुझेन बाबू बुझेन।
3: काकी बल्कि रमेश का मोटरसाइकिल लेके आवे कहा जाए ना, जल्दी से जल्दी साधन खोज के एंटी वेनम दई जाए वाले स्वास्थ्य उपचार केंद्र में ले जाए, मिला तो मुस्कान का जल्दी ठीक हो जाए। कहा जाए तब तक हमरिंग के गांव से कौन एंटी वेनम केंद्र नजदीक पड़त है, हम snakebitenepal.org के वेबसाइट में खोजित है। हाँ डाटा हम पे देखे करा। हाँ देव snakebitenepal.org वेबसाइट खुली गवा, हमरे इनके गांव से तो गुरु सिंहिया सर्पदंश उपचार केंद्र में सर्पदंश के उपचार कई जात है, मुस्कान का वहीं ले जाके पड़ा।
1: राकेश बाबू मोटरसाइकिल लेके रमेश आए गए।
3: काकी हम मुस्कान का ना हिलाए के मोटरसाइकिल के सीट के बीच में बैठाए के अपने पीछे से पकड़ के बैठा जाए, जल्दी से जल्दी सर्पदंश उपचार केंद्र में पहुँचाई मिला तो मुस्कान का बचाए सका जात है।
1: जी हो थे बाबू, चलो।
4: याद रखा जाए, सांप डस लिए के बाद मोटरसाइकिल स्वयंसेवी बुलावा जाए, सर्पदंश उपचार केंद्र ले जाए के जान बचावा जाए, या कौनो सवारी साधन उपलब्ध न रहा अवस्था में वेबसाइट से स्वास्थ्य कर्मी के फोन पता लगाए के फोन से सुझाव लिया जाए।
5: वही मेर से मरीजों का सांप से सावधान रह के चाहिए, मरीगवा सांप का झटपट छुए और चलावे के नहीं चाहिए, कबो काल सांप मरीगवा है सोचा जात है, लेकिन वो डस सकत है, संभव हो तक डसे वाला सांप के फोटो खींच के डॉक्टर अथवा स्वास्थ्य कर्मी का दिखाए पर वो लोग का सांप विषालु है कि नहीं पहचान करके सही उपचार करे में सहयोग करत है।
4: सही समय पर उपचार किए पर सांप डस लिए व्यक्ति का बचाई सका जात है, और ऐसे हो सके वाला मृत्यु दर कम कर सका जात है। सांप डस लिया व्यक्ति का जल्दी से जल्दी उपचार केंद्र में ले जावा जाए, ऐसे वह व्यक्ति के जीवन बचावे की मदद करत है। विश्वसनीय और सही जानकारी प्राप्त करे के और नक्चरवे के उपचार केंद्र कहाँ है पता लगावे के खातिर आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में जाए के आवश्यक जानकारी ले सका जात है।
6: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय, इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, WWF नेपाल का साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौं मिटटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
7: ए ला यो बाइक बिग्रेर हैरा नै पार्यो। जति बेला इमर्जेन्सी पर्छ त्यति बेलै बिग्रिन्छ। यो बाइक बनाउँदा बनाउँदा त नयाँ बाइक किन्ने पैसा पनि खर्च भइसक्यो होला।
8: अब फेरि बनाउनमै पैसा खर्च नगर, नयाँ बाइक किन न बरु।
7: नयाँ बाइक त किनौला, तर नयाँ बाइक किन्ने पुरै पैसा पुग्दैन।
8: पैसा नपुगेर के भयो त? बाडगङ्गा अटो टेरसमा सजिलो किस्ताबन्दीको सुविधा छ, अनि तिम्रो पुरानो बाइकको पनि आकर्षक मूल्याङ्कन सहित एक्सचेन्ज हुन्छ।
7: ए हो र, त्यसो भए अब पुरानो बाइक एक्सचेन्ज गरेर नयाँ टिभीएस बाइक चढ्नु पर्यो।
8: हो नि, आकर्षक टिभीएस बाइक तथा स्कुटी मध्ये एउटा छान, सजिलो इएमआईमा नयाँ टिभीएस लैजाऊ।
9: हजुर, नयाँ टिभीएस बाइक तथा स्कुटीका लागि आजै पुग्नुहोस् टिभीएसको आधिकारिक विक्रेता बाडगङ्गा अटो ट्रेडर, बाडगङ्गा एक बैरिया कपिल वस्तु।
7: तपाईँको पुरानो बाइकको आकर्षक मूल्याङ्कन सहित एक्सचेन्जको सुविधा, मर्मत तथा सर्भिसिङमा अनुभवी प्राविधिकको दक्ष सेवा, कम्पनीकै ओरिजिनल पार्ट्सको भरोसा। बाडगङ्गा अटो ट्रेडर, पुरानो झन्झट छोडौ, नयाँ टिभीएस चढौ।
9: सम्पर्क नम्बर 076550111, 98570131363 र 98019443064।
10: कपिल वस्तुवासीहरूका लागि खुसीको खबर,
7: अब निशुल्क अल्ट्रासाउन्ड र एक्सरे सेवाका साथै ल्याब टेस्टमा सिधै 20% सम्मको छुट,
10: अनि निशुल्क भिडियो एक्सरे र डिजिटल एक्सरे तथा सम्पूर्ण प्रयोगशाला जाँचहरूमा 20% छुटको विशेष सुविधा लिएर आएको छ लाइफ भिजन पोलिक्लिनिक।
7: हामी कहाँ 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवाका साथै प्रत्येक शनिबार र हप्ताका अन्य दिनहरूमा अनुभवी तथा विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा
10: ओपिडी, प्रसूति तथा स्त्री रोग, हाड जोड्नी, नाक कान घाँटी, बाल रोग, छाला र जनरल सर्जन सम्बन्धी भरपर्दो उपचार उपलब्ध छ।
7: एकै छट मुनि अत्याधुनिक कलर डप्लर, अल्ट्रासाउन्ड, डिजिटल एक्सरे, ईसीजी र 24 घण्टा फार्मेसी सेवा।
10: ढिला नगरी आजै सम्पर्क गरौ, यो विशेष अवसरको फाइदा उठाऊ।
7: लाइफ भिजन पोलिक्लिनिक, कपिलवस्तु नगरपालिका 6, थुमुवा, सशस्त्र चोक। थप जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 98174888 र 97683-70260।
10: लाइफ भिजन पोलिक्लिनिक, तपाईँको स्वास्थ्य हाम्रो प्रतिबद्धता। होइन,